या देवी सर्वभूतेषु शारदा रूपेण संस्थितान् नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः श्री परमात्मने नमः। एक बार एक छोटा का लड़का कयो करने वाले गोमती का चलते गा रहे थे, जिसमें उसने का पास मृत्यु बना चावल करने वाले, एक दिन चम्मच का दूध पिया करने वाले,

गणपति दे, सिंग विद मी, गजानना हे गणपति, आई वांट टू हियर यू एवरीबॉडी, जय जय जय जय, जय जय जय जय गणपति, stand up person next to you, sing better now, stand up person, Auntie Angie, you're right here, I can't hear you.

का वचन करने वाले देखो भुमारी करने देखो गम गणपतये नमः गम गणपतये नमः गम गणपतये नमः। रर्ता का बहुत खुश करने वाले उस न्या का बनान देखो बर्तन की कया बना होते करने वाले जिसमें का बर्तन का चावल दूर और तोरिया चीनी करने डाले हैं जिसमें कीर का प्रकट हो करने वाले लदन लदा का खुश करने वाले जिसमें का अंदार कलिए हैं श्री परमात्मा ने नमः। The old lady knew that rice took a while to boil, to cook. And so she looked at the little boy and she says, this might take some time. But everything that she placed in the pot, she chanted,

सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधिं निर्मलं जनं आत्मनम्य अदत्त गृहाणा परमेश्वर पापोहं पापकर्माहं पापात्मं पुंडरीकाक्षे त्राहि मां पुंडरीकाक्षे सर्व पाप हरो हरि ओम भूर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्याधीमहि देवो न प्रचोदयात् इदं गात्रेदं नाम मम ओम भूर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्याधीमहि देवो न प्रचोदयात् इदं गात्रेदं नाम मम ओम भूर्वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो

14 बरस के लिए वनवास जा चुके हैं तो वे अपना संतुलन खो बैठे। माँ केकई को बार बार कह रहे हैं कि बिना राम के वे नहीं जी सकेंगे।

0: DJ Ashley is in the mix.
1: ओ दिल ऐसा किसी ने मेरा
2: The woman in power.

दक्षिणादानं समर्पयामि पुष्पदानं ओनली फ्लावर्स नॉट योर रेड माला ओनली फ्लावर्स वी ऑफर मल्लिद्यादिनि सुगन्धिनि मल्लिद्यादिनि वे प्रभु मायाटानि पूजातम्।

नमोस्तुते महादेवी माता सरस्वती नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। अज्ञानं द्विदण्डस्य ज्ञानिनं शलाघ्य चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमात्मने नमः। एकसमये की